0: वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े

0: चतुरा घोड़ा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
2: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आया आया आया आया। चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, मरत जात, अरे मरत जात।

0: क्या मजाक लगा रखा है, चलना है कि नहीं आपको? आप आती हैं कि नहीं? ओके, मैं जाता हूं। ये मुसीबत में फंसा दिया, आखिर आप चलती हैं कि नहीं? देखो पहाड़ उतरना आसान काम नहीं, पांव फिसल गया तो खड्डे में गिरोगी। आखिर आप चाहती क्या है?
1: मुझे माफ कर दीजिए।
0: माफ किया, चलो अब।
1: ऐसे कहीं जोर से कहिए।
0: अच्छा बाबा माफ किया, अब चलो उठो।
1: ऐसे नहीं, चले प्यार से

सागर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

धावे कृत धरन धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के झन नन नन नन नादरी दीन तनु नन नन तन।

0: जी, मुझे तो देख के शर्म आ रही।
1: ओ, वहां जाते शर्म नहीं आती?
0: वहां की और बात है, वो घर की औरतें नहीं, उनका तो काम ही यही है मर्द को रिझाना।
1: ओ, और घर की औरत का ये काम नहीं अपने मर्द को रिझाना? जो नहीं रिझाती वो मर्द खो बैठती है।
0: ये भी कोई बात है? छी छी
1: छी, तुम पर, तुम्हारे बूढ़े ख्यालों पर।
0: बूढ़े ख्याल? कौन कहता मेरे ख्याल बूढ़े हैं?
1: मैं कहती हूँ, तुम्हारी बीवी स्क्वाड्रन लीडर सुंदर, तुम्हारे ख्याल भी बूढ़े हैं, तुम बुढ़े हो।
0: मैं बुढ़ा?
1: हाँ बुढ़ा।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

ना था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी हसीना से, जो मुलाकात